0: मेरा नंबर, डायरेक्टली बात करना, डांट में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है ओके। वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्को की तरह बिहेव मत करना। आई कैरी पेपर स्प्रे।
1: ओके।
0: बाय द वे नेहा,

0: Dun-dun-dun. Promotion letter.
1: Congratulations.
0: Thank you.
2: Wow.
0: Baby, Bangalore.
1: I hope you said no.
0: No? Main no kyun bolungi?
1: Huh? Mera kya hoga? As in, hamara kya hoga?
0: Baba, tumhare hamare ki baat nahi hai. Tumhe pata to hai ye promotion mujhe kitni mushkil se mili hai. I have to go to Bangalore.
1: अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो फिर मुझे पूछने क्यों आई?
0: हेलो, मैं पूछने नहीं आई, मैं बताने आई. आई डोंट हैव टू आस्क यू एनीथिंग और मैं जा रही हूँ बैंगलोर. व्हाटएवर.
1: लिसन बेबी,
0: डोंट टॉक टू मी.

0: पहलमा ठिक 8 बजे।
1: होटल टाइटेनिक गंगबु बस पार्क, प्रोपाइटर रामचन्द्र महत, मोबाइल 98461680 98235527763।